0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र
0: त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र मानिय सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है
0: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
1: सर्वं कली में के फर्मंग फही में के आकल हला में के साहिब कला में
0: ये सुनर वजू है तमाम मदरजू है में सलाम में सलीकत मदाम में
1: गरीबल शिकस्ते गरीबल परस्ते विलंदल मकाने जमीन और जमाने
0: तमी जल तमाम मैर जूर निदान है हरी फुल अजीम मैर जाए के यकीन है परी
1: कुल त्रंग है अपेज है अपंग है अजीजल निवाज है गलीमल खिराज है
0: निरुक्त स्वरूप है त्रमूत भूत है प्रयुक्त प्रभा है सजुक्त सुदा है
1: सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदा वलकाम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है
1: अंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रभंगं त्रभादे अगंजे गादे शुभंग सर्वभाग्य सो सर्वा नरागे
1: मुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंग पर नाश है पृथ्वी प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद
0: अपंग

0: शन्त्वे प्रसाद
1: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल शन्त्वे प्रसाद
1: नमो नरकनाशेषदैवं प्रकाशेनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते
0: परमातं परमाते सदा सर्वसादे अगाधे स्वरूपे निर्वादे विभूते
1: अनंगी नामेत्र भंगी दृगामेन्द्र भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते
1: निरसाकं श्री कैमितोमी कैसदैवं प्रवाह जे है आजा है
0: पार्वती शन्त्वे प्रसाद
1: के जाहर जूर है के आज रजूर है मिसल सलाम है समस्तल कलाम है
0: के साहिब दिमाग है के उसनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है
1: के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीम उल कमाल है के उसनल जमाल है
0: रहीम उल के राज है गरीब उल निवास है हरीफ उल शिकन है हिरा सर्फ गन है
1: रंकं पनास है समस्त निवास है गंजल गनी में रजाय करहीम है
0: समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकंग पनास है बेस्तल निवास है
1: के सर्वगवान है मैं सर्वान है तमाम मुल्तमीज है समस्तल जीज है।

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है।
1: कित कितरन है, जग के करन है, मन मान्य है, जग जान्य है।
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वस्य है, सर्वनस्य है।
1: करुणा कर है, बेसंबर है, सुरबेश्वर है, जगतेश्वर है।
0: ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, परते पर है, करना कर है।
1: अजपा जापै, थपा थपै, करता करता, अमृता अमृत है।
0: अजपा कृत है, अमृत।

0: हम ते स्वर हैं परमेश्वर हैं कर्ता कर्ता मृत हैं मृत
1: हैं
0: संबर है करुणालय है नृपनायक है सरपायक है
1: अर्गंजन है अर्गंजन है रे प्रतापन है जप जापन है
0: अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है अर्ता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जस है पुचंग पयात छंद
0: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो राशं ताम संसाद रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बबूते
0: कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आसास नमो बांक बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद
0: अजय अलय अपय अभय
1: अकू अजू अनास अकास
0: अगांजा पांजा

0: नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजल नामे समस्तल निवासे
1: नामंग भूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सुतर्मंग भूते
0: सदा सच धन सतरंग परनासी करी मुख निंदा समस्तल निवासी
1: चतर
0: चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते श्याम वंश वंश

0: हो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया।
1: एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरू लिखिया आया,
0: इक फिरे कनेरे करे गल्ला गली कनै ना पाया।
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया,
0: पवित्त होए से जना जिनी हर त्याया,
1: हर त्याया पवित्त होए गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित्त माता पिता कुटुंब सहत से ओ पवित्त संगत सबाया,
1: कह दे पवित्त सुन दे पवित्त से पवित्त जिनी मन वसाया।
0: कह नानक से पवित्त जिनी गुरमुख हर हर त्याया,
1: करमी सहजन उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए,
0: ना जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहसे जियो मलिन है कित संजम धोता जाए,
0: मन तो बो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए।
1: कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए,
0: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तिने जन्म जुए हरिया।
1: दिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया,
0: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया।
1: कहे नानक जिनसा सजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जोए हारिया,
0: जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
1: ऊड़ की सोए पहुंचे नाही मन

मनुआ किन ऊब प्याली जब लग सब न जन्न है। भूख प्यासा जग पया तिप्त नहीं बिना सतगुर पाए। सहजे सहज मिले सुख पाई दरगह पैंदा जाए। दरगह दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरत सच विचारस आपे बूझे पद निर्बाणी। जल तरंग अग्नि पा

सचार मंदर प्रगट सच प्रगटी सच साची सोए रहाओ। हर मंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुख मूल न जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जीव साजे आराख्या हुक्म सवार, तुर लेख लिखिया सुख मावना कोई न मिटन हार। शब्द चीन सुख पाया सच्चे नाए प्यार, हर मंदर शब्द सोने कंचन कोट भार। हर मंदर ही जागत है गुरबिन घोर को रंग धार। दूजा भाव कर।

आपके लिए कृपाले। काम क्रोध स्यों ठाट ना बने आ, गुरु उपदेश मोए कानी सुनिया, जै देख ता महा छंडाल रख लिए। अपने गुरु गोपाल दस नारी मैं करी दुहागण, गुर के आए रसै बेहागण।

प्रभाव अस बोले कि न्याय सगल दूत मेरी सेवा लाए तू ठाकुरे गह ग्रह सब तेरा कहो नानक गुरु किया नबेरा प्रभाती महला पंजवा मन में क्रोध महाअंकारा पूजा करे बहुत विस्तारा कर शनातन चक्र बनाए अंतर की मलका बिज ना जाए इत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगती मंदरा मन मोहे माया राओ पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए करे सब उतरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बहर कमावे होए नसंक जमपुर बांध खरे कालंक कुंगर बांध बजावे ताला अंतर कपट फिरे बेताला वर्मी मारी सपना मुआ प्रभु सब किस जाने जिंतु की आर ताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारे आ ग्रह ते नस्ता देश ओढ़ परदेस ताया पंच झंडा।

राम रतन पाया करत बिचारा रहाओ। जय नंद दुख दूर पे अन्ना, मन माणक लिव तत् लुकन्ना, जुग छुआ सुतेरा पाणा, जो बुझे सो सहज समाणा, कहत कबीर किलब गय कीना, मन भया जगदी मन भया जग जीवन लीना प्रभाती। अलो एक मसीत बस्त है अवर मुल्ख किसकेरा, हिंदू मूरत नाम निवासी दो मैं तत् न हेरा, अल्लाह राम जी वह तेरे नाए तू कर मैरम मत साई राओ।

कंचन भयला, तुमचे पार समचे लोहा संगे कंचन भयला, तू दे आकड़ रतन लाल नामा साज समायला। प्रभाते अकोल पुरख एक चल दिखाय, खट कर अंदर ब्रह्म लुकाय। जी की जोत न जाने कोई, ता मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभो, आप ही करता है बिठल देव। जी के बंधन मर्म कर्म बे आपे, जो कुछ किया सो आपे आपे। परण वतन नाम देव, यह जीव चितवे सो लहे। अमर होए साध्या कुल रहे। प्रभाती भगत बेणी जी की। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाते, हृदय अंतर कर तड़काते। ठग दृष्ट बगा लिवलागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चरामंग, अक्रूर दृष्टता निस्बादंग रहा। नित प्रात स्नान शरीरंग, दो धोती तो गर्मुखी रंगे। हृदय छुरे मोह सुंद ज्ञानी, पर द्रभ हिरर की बानी। शिल पूज सकर गणय संगे, निस्बाद जार जार गस भगत पुरय संगे। पग नाचस्ते नाचस्ते अकर्मंगे, लंकुट नाच अथर्मंग। मेरे ग्यासन तुलसी माला, कर उजल तिलक पाला। हृदय कूढ़ कंठ रुद्रा दुखंगे, रे लंकुट कृष्ण भाखंग। जिने आत्म तत् न चीने, सब ठोट कफोकट धर्म धर्म अभिनया, को बेणी गुरमुख द्यावे। बिन सत गुरु वाटना पावे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी, सह गुर प्रसाद राग जय जावंती महला नौवां।

जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब सज रहा। सुपने जो तन पछाण पाए काय पर करत मान बारू की पीत जैसे वसुदा को राज है। नानक जन कैद बात बिन सजह ते रोगात छिन छिन कार गहो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नामा राम पज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझ न क्यों गुआर बिन सतना लागे बार और सम गात है। रहाओ सगल भरम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरा है एक जात है। बिखिया बिखे जो विसार प्रभु को जस ये तार। नानक जन कह पुकारे अवसर बिहात है। जय जावंती महला नामा रे मन उठले जी मन कौन गत होया तेरी। इह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखियन सुया तिरभान मत नाहन फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन सिमरन निमकीन दारा सुख भयो दीन भगो परि बेरे। नानक जन कह पुकार सुपने जो जग पसार सिमरत न क्यों पुमरार माया जाकी चेरी। जय जावंती महला नामा।

नानक लेव से प्रणाली पते न शीतलंग चंद्र देव देव न शीतलंग बावन चंदन न शीतलंग शीतल तीन नानक शीतलंग सा स्वजन मंत्रंग राम राम नाम गे ध्यान सर्वत्र पूर्ण ज्ञान साम ज्ञान साम दुख सुख जुगत निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोग विवर्जित भोजन गोपाल कीर्तन गल्प माया जल कलम रहत उपदेशंग सामित्र सत्र भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत सर्वणंग आप त्याग सर्व ऋणक खट लखन पूर्ण पुरख नानक नाम सा स्वजन अज अजह पुघंत कन मूल बसंत समीप गहर चतर गति संसार नानक सोग हरखंग व्यापते छलंग छिद्रंग कूट विघनंग अपराधंग किलवख जलम मलंग परम मोहंग मान कुमानंग मदंग माया व्याप्तंग मित्र जन्म स्पुरमंत नरहर कणक पावन सिद्धत अणक पावन सिद्धते निर्मलंग सासंग है ज पंत नानक गोपाल नामंग रमंत गुण गोविंद रत प्रतः तरण शरण स्वामी रमन सिंह परमेश्वर करण करण सम्राट दान दे प्राप पूर्ण निराश आस करण गे सगल अर्थ ला आलिया गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंद जाचक दुर्गम सतान सुगम महा दुख सर्व सुखना दुर्वचन भेद परम साक्त पीसन ता सुरजन है अस्थंग सोग हरखंग तीनंग निरपव पै अटविंग महानगर वासंग धर्म लखन ब्रह्म सत्संग राम नाम रमन स्नान शरण नानक हर हर दयाल रमन हे चुते सूर संग्राम अत बलना समच मर्दन गण गंधर्व दे मानुकंग पास पंकी निर्भय मोहन हर करण हर निर्भर नमस्कार शरण नानक जगदीशराय हे काम नरक विश्राम बोहत जुनी प्रमावन चित हरणंग त्रिलोक गमंग चब तब शील विदारद विदारण अल्प सुख वित चंचल ऊच नी समावन ताव भाव पै विमंचित सत्संग ओ नानक नारायण हे कल मूल क्रोधंग कंस करुणा न पुज त्रते विख्यंत जीवंग वसं क्रोत नरकंत क्रूर जथा मरकट अनक सा संतरहंत जमदूत तब संग अधंग नर दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक सर्व जी रख्या क्रोध हे लोभा लंकुट संग सिरमोन अणक लहरी कलोल ते तावंत जी बहुविध बहु प्रकार अणक पात बहु डोलत नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लज्जय अकरणंग क्रोध अखाद खादंग साधंग साध समझया त्राय त्राय शरण स्वामी विख्या विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारंगे पापात्मा मित्रं तजहंत सतरंग द्रोणंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जवंत अकंत जिया दुख सुख बहुभोगन परम भयान उद्यान रमणंग महा विकट साध रोगण भेदं पार परमेश्वर साराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण दुख मय करुणा मय सब दुख हर हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मै करो शरीर स्वास्थ्य की समय सरमंतरा नानक राम दुमो धर्माधव चरण शरण सर चरण कम शरण चरण गोपाल कीर्तन सत्संग तर नानक महासागर पै दुतर सिर मस्तक रखे पारम हस्त कह रखे परमेश्वर आत्म रख्या गोपाल स्वामी धन चरण रख्या जगदीश रह सर्व रख्या गुरुदयाल पै दुख बिनासने भगत चलनाथ नाथ सर नानक पुरख जत जीन कला धारियो का संग बेस्त्रंग बैस्त्रंग कास्ट बेस्टंग जीन कला ससु नखेत्र सस जोत असाम सासं श्रीर सातारणगे जीन कला मात गर्व प्रतपालंगे न छद्रंग छत रोगण तीन कला वस्तंभंग स्रोर नानक नह सजंत त्रंगंग त्रंगंग

ज्ञान भजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आ जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नाम सकरा ए श्लोक आद अंत पढ़ना।

0: तोए
1: गंध प्रीत पसम संग हुए
0: अंध कूप में पत बिकराल
1: नाने काल लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग पचारा करे दिन रात
0: बाहर पे एक अंतर मलमाया
1: शब्द नायक।

0: मिथ्या तन धन कटंब सवाया
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राजो बंतन माल
1: मिथ्या काम क्रोध बिकराल
0: मिथ्या रत हस्ती अस वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हासा
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर करत गमान।

0: जय प्रसाद सुगंध तन लाभ है,
1: सिमरत पार मुक्त पाव है,
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
1: है, जिसे ध्याए सदा मन अंदर है,
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसनो,
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: जय प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याए त्या बन जोग,
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है,
1: जिसे त्या कत अवर लबावे,
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय,
1: मन आठ पैर ताका जस गावी,
0: जय प्रसाद तुझ सब को मन
1: मुक्ता को जस रस रखाने।

0: आवे हर हर जस कहत
1: जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके
0: मन सरनी पर ठाकन प्रभ ताके
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन साह साह सिमरो प्रभु जे
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह
0: नानक ताकी भगत करे
1: जे प्रसाद भूखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत क्यों आलस कीजे
1: जे प्रसाद असभ हस्त असवारी।

0: संगमल सगरी को
1: साध के संग मिटे अभिमान
0: साध के संग पटे सो ज्ञान
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
0: साध संग सब होतन वेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
0: साध के संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन परानी
0: नानक साध की शोभा ब्रह्म माहे समानी
1: साध के संग अगोचर मिले
0: साध के संग सदा पर फुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत
1: साध संग

0: साध प्रभु बने आए।
1: साध के संग ना कब हूँ तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त अगोचर है,
0: साधु के संग अजर सह।
1: साध के संग बसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुँचे।
1: साध के

0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बट भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

0: अंतर और तारे
1: परेत मुग्ध पात्र को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण मुँह मंगल गुण
0: गाम जुगत कित न पाइये धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: दास सतन पाए तन पाए।

0: सर्प उपाय
1: केई कोट पाथर बिरख निप जाए
0: केई कोट पवन पानी बैसंत
1: केई कोट देश पो मंडल
0: केई कोट ससियर सूर नखत्र
1: केई कोट देव दान इंद्र सर छत्र
0: सगल समग्री अपने सो धर
1: नानक जिस पावे तिस सिसने सतार
0: केई कोट राजस तामस सातक
1: केई कोट वेद प्राण सिमर अर सास
0: केई कोट किए रतन समंद
1: केई कोट नाना प्रकार जानत
0: केई कोट किए चिर जीवे
1: केई कोट गिरी मेर सवारन थीवे
0: केई कोट जग किनर पिसाच
1: केई कोट पूत परे सुकर मर गाच
0: सब ते नेरे सब हुते दूर
1: नानक आप अलवतरिया पर पूर
0: केई कोट पाताल के वासी
1: केई कोट नरक स्वर्ग नवासी।

0: ज्योतिष कौमा नुक्ते क्या होए आवे
1: ज्योतिष पावे सोई करावे
0: इसके हाथ होए ता सब किसले
1: ज्योतिष पावे सोई करे
0: अनजानत बिख्या मैं रचे
1: ये जानते अपने आप बचे
0: पर में भूला दे दिस तावे
1: निमक मैं चार कुंड फिर आवे।

0: रहे।
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
0: कबू होए पंडित करे बखियान,
1: कबू मोन तारी लावे ध्यान,
0: कबू तट तीरथ स्नान,
1: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जी।

0: मरे भोजन परमाए।
1: धन भूमिका जो करे गुमान,
0: सो मूर्खन दा ज्ञान।
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे,
0: नानकिया मुक्त आगे सुख पावे।
1: धनवंता होए कर गरवावे,
0: सिरड़ समान का संग न जावे।

0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सह जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सोबरते हीन,
1: संत के हथे को रखे न कोए,
0: संत के दुखन थान परष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक सत्संग निंदक पी तरे,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन कागजे लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिक जून कर माए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को छले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीचन जाए,
1: संत दुखी का था को नाहे,
0: नानक संत पावे ता उभी गत पाए,
1: संत का निंदक महत ताई,
0: संत का निंदक निटेक ना पाए,
1: संत का निंदक महत यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राय ते हीन,
0: संत का निंदक दुखी यार दीन,
1: संत के निंदो को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा भजोग,
1: संत की निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा अवित,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को दान दान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी महंकारी,
0: संत का दुखी सदा बकारी,
1: संत का दुखी जन में मरे,
0: संत की दुखना सुख ते डरे,
1: संत के दुखी को नाही ठो ठाओ,
0: नानक संत पावे ता लय मलाए,
1: संत का दुखी आज भी ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी ओ ध्यान परमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर थे थोथा,
0: जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किस ना है,
0: अपन बीज आपे ही खाए,
1: संत के दुखी को अपना राखन हार,
0: नानक संत पावे ता लय भार,
1: संत का दुखी बेल लाए,
0: ज्यों जाल विहीन मछली चढ़पड़ाए,
1: संत का दुखी भुखा नहीं राजे,
0: ज्यों पाप की तन नहीं त्रापे,
1: संत का दुखी छूटे अकेला,
0: ज्यों बाण तेल के तमाहे देला,
1: संत का दुखी आराम धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: किरत निंद का त्वरि पिया,
0: नानक जिस पावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
1: संत के दुखी की पूजन आयासा,
0: संत का दुखी चले न रासा,
1: संत के दुख ना

एको एक एक पहचाने नाम समझे इसका मन मानिया गुर प्रसाद अपन आप सूजे सा संघर है जस कहत आंदन कीर्तन के बल बखियान एक उपज जन की आशा पर ब्रह्म की जिस मन भूख जिसको आप

0: नाम के तारे पूरियां सा पवना,
1: नाम के संग उदरे सुन सरबना,
0: कर के पा जैसे अपने नाम लाए,
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए,
0: रूप सत जाका सत स्थान,
1: पुरख सत केवल प्रधान,
0: करतूत सासा जाके बाणी,
1: सत पुरख सब माए समाणी,
0: सत कर्म जाके रचना सत,
1: मूल सत सत उत पत,
0: सत करनी निर्मल निर्मली,
1: जिसे बजाए तिसे सब भली,
0: सत नाम प्रभ का सुखदाई,
1: विश्वास सत नानक गुर ते पाई,
0: सत बचन साधु उपदेश,
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश,
0: सत नित बुझे जे कोए,
1: नाम जपता की गत होए,
0: आप सत किया सब सत,
1: आपे जाने अपनी मित गत,
0: जिसकी से सो करने हार,
1: अब न बूझ करत विचार,
0: कहते की मित न जाने किया,
1: नानक ज्योति पावे।

0: बढ़ाई
1: अपने सेव को नाम जपाई
0: अपने सेव की आपत राखे
1: की गत मित कोई न लाखे
0: प्रभु के सेव को न पहुँचे
1: प्रभु के सेव को उच्चते उच्चे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दे तिस प्राया
0: नीकी कीरी में का रखे
1: भस्म करे लाश कर कोट लाखे
0: जिसका शासन करत आप
1: को राख दे कर हाथ
0: मांस जतन करत बहुपात मारी न रखे अवर न कोई
1: सर्व जिया का राखा सोए
0: काहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नानक प्रभ अलख बढ़ानी
0: बारों बाबा प्रभ जपिए
1: अमृते मन तंत्र पिए
0: नाम रतन जन गुरमुख पाया
1: सबर नाई दिसताया
0: नाम तन नाम रूप रंग
1: नामो सुखार नाम का संग
0: नाम राजो जान त्रिपताने
1: मक्ता नामे नाम समाने
0: ऊर्त बैठ सोवत नाम
1: नानक जन कै सद काम
0: बोलो बोलो

0: तिसके संग से खुद
1: नानक हर गुण गाओ अष्टपदी
0: सतगुरु से की करे प्रतिपाल
1: गुरु सदा दयाल
0: से की गुरुदुर मत मल हेरे
1: गुरु बचनिया नाम उचरे
0: सतगुरु से के बंधन काटे
1: गुरु का सिख बकार ते हटे
0: सतगुरु से को नाम तान दे
1: गुरु का सिख मट पागी है
0: सतगुरु से कालत पाल सवारे
1: नानक सतगुरु से को जी नाल समारे
0: गुरु के ग्रह से जो रहे
1: गुरु की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कछ न जनावे
1: नाम हृदय
0: मन बेचे सत गुर के पास
1: के कार्य रास
0: सेवा करत होए नह कामी
1: जिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे
1: नानक सो सेवक गुर की मत लहे
0: बीस विश्व गुर का मन माने
1: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
1: अनक बार गुर को बल जाओ
0: सर्व दान जी का दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म गराता
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
1: एके आप नहीं कश पार
0: सह स्यान पे लिया ना जा।

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: वो बिनसे पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: तितका जाए बसे अवनासी,
0: को नानक काटी जम फांसी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभु सेवा,
0: आप त्याग सनगर देव,
1: यो रतन जन्म का हुए उदार,
0: हर सिर प्राणी उदार,
1: आनकु पाप न छूटन हारे,
0: सिमर शास्त्र वेद बचारे,
1: हर की भगत करो मन ला,
0: मन वश नानक फल पाए,
1: संग न चालस तेरे तना,
0: दुखे लपटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटम यार बंता,
0: इंदे कौं तुम कमल सनाता,
1: राज रंग माया विस्थार,
0: इंदे कौं कमल छटकार,
1: हस हस्ती रथ असवारी,
0: झूठा डंप झूठ पासारी,
1: जेन दिए तिस बुझे ना बिगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातु लेह ए आने,
0: भगत बिना वो डूबे सियाने,
1: हर की पात करो मन मीट,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माहे,
0: जन्म जन्म के किल विख जाए,
1: आप जपो हमरा नाम जपावो,
0: सुरत कहत रहत गत पावो,
1: सार पूछत हर को नाओ,
0: सह सबाए नानक गुण गाओ,
1: गुण गावत तेरे उतर समैल,
0: बिस जाए होमे विख फैल,
1: होए अचैंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासा नाम समाल,
1: शाड़ स्यान बसगली मना,

0: प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन में हो बसास
0: संत जना का पेख सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सब बचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस किए है रहत
1: बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सो सुख माने
1: नानक रावण हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बार पी ओही
1: नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सात किया सब सात जिस पावे ता करे विस्तार अन कला लखी न जाए
1: जिस पावे तिस लए मड़ाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतरगा जिस आप जनाए
1: नानक जनन आप बजाए
0: सर्वभूत अवतार
1: सर्व नैना पेखन हारा
0: सगल

0: गुर का सुन उपदेश
1: बार ब्रह्म निटकर पेख
0: सा सा सिमरो गोविंद
1: मन अंतर के उतरे चिंद
0: आसनित उत अगो तरंग
1: संत जना की तूर मन मांग
0: आप छोट बेनती करो
1: सा संग अग्न सागर तरो
0: हर तन के पाले हो पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहजानंद
1: सा संग पज परमान

0: दयाल
1: भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमना बारंबार
1: नानक जी का है दार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमरीक लाल ए रतन
0: सुनत कमावत हो।

0: इष्ट का फूल। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए,
1: संतन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट।

मेरा मन ऐसी पगल कब को नाचे पांव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाओ पसारत बिनव तिल लाग तब लग मेरा मन राम समारे।

तिन लिया अंचल लाए, तिन लिया अंचल लाए। गुरु प्यारी साध संग जी बाणी दे कत अनुसार आप जी ने सुनिया, जैसे रहन प्रौण उठ सल से प्रभात, क्या तुरता गिरस्त स्यों सब फुलना की बागात। ये जीवन सफलता होना जे पंजा प्यारियां कोल जाके रहत समझ के नाम दृढ़ करा के संगत च बह के नाम जप के जीवन ता सफल होना। इसे प्रथाएं इस समागम विच अमृत संचार रात नू है। पंजा प्यारियां ने तुठना है, पंजा प्यारियां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी विराजमान होके, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होके अपना बनाउणगे। जिन्हां जिन्हां ने गुरु साहब का बनना है, गुरु साहब नूं अपना बनाउणा है, आप तैयार बर तैयार होके रात नूं रकाबगंज साहिब शाम नूं 4 बजे रकाबगंज साहिब जी तैयार बर तैयार होके पंजा ककारां दे धारनी बन के उत्थे पहुँच जाओ ते तरले पा के ये दात लै लो जी। रात नूं रहन सवाई भी है रकाबगंज साहिब जी, आप जी सारिया ने पहुँच के लाहे लैणा जी।

मेरा तन मन ठंडा हो, त्राहे त्राहे कर शरणी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को।

रांगन रांगों सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करों हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम ते आवो